0: non-judgmental village is very important.
1: तो शर्मिली जी आज आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम कभी भी और कोई ऐसा सजेशन है मेरा तो प्रयास एक रहेगा कि इस दर्पण रेडियो के माध्यम से कम इस चीज़ का हम वातावरण बनाएं कि हम अकेला महसूस ना करें एज ए पेरेंट्स और एज ए चाइल्ड ये हमारा प्रयास है आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिली जी
0: थैंक यू फॉर योर इनिशिएटिव थैंक यू

श्रोताओं हम अपने कुछ श्रोता हैं उनके जो संदेश हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। लीला जी बोलती हैं, लीला तिवानी जी, बहुत खूबसूरत शुरुआत के साथ बहुत अच्छा भजन भी मनमोह हो गया, अत्यंत मार्मिक सच्चाई। ऋचा जी लिखती हैं, ऋचा श्रीवास्तव जी लिखती हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आधारित है, धन्यवाद यतीन जी, सामयिक गीत। लीला जी फिर लिखती हैं, अभिभावक होना एक बड़ी जिम्मेवारी है, इसमें तनिक भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। बच्चों की सब सुविधाएँ देने के साथ उनका महत्व भी बताया समझाया और सही उपयोगिता बताई जाए और सुविधाओं के साथ समय भी देना है और सिर्फ उनको सुनना ही नहीं उनको सुनना भी आवश्यक है। बहुत सही बोला है लीला जी आपने, वही वार्तालाप है कि अगर आप अगर कम्युनिकेशन वन वे हो गया तो गई बात हाथ से। रेणु जी लिखती हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे अच्छा और बुरा दोनों कहा जा सकता है वह टेक्नोलॉजी। यह दवा संचार व शिक्षा के माध्यम से जीवन को बेहतर बना सकती है। यह लत, निष्ठा की हानि या गलत उपयोग जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। धन्यवाद रेणु जी, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मेरा उसमें प्रश्न ये था कि क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्युटली राइट है या एब्सोल्युटली सही। तो जैसे कि किसी की मृत्यु करना, क्या वो गलत है, एब्सोल्युटली गलत है या सही है, इस तरीके का भी प्रश्न था। ऋचा श्रीवास्तव लिखती हैं फिर से कि आचार्य रजनीश की बातें सभी माता पिता के लिए बहुत उपयोगी हैं और अनुसरणीय हैं। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, कार्यक्रम का भावपूर्ण आरंभ, अच्छा विचार, मधुर भजन, बहुत बहुत मधुर गीत माँ। लीला जी फिर लिखती हैं, बच्चा भी सम्मान चाहता है, सम्मान से सम्मान मिलता है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बिल्कुल सही बोला है लीला जी आपने, बच्चे को आदेश नहीं आदर्श चाहिए। या डॉक्टर राजीव कुमार लिखते हैं, मदर्स डे एक सप्ताह पहले सही माँ का सुंदर गीत, धन्यवाद राजा जी। सुनील श्रीवास्तव लिखते हैं, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पेरेंटिंग पर आधारित है, धन्यवाद यतीन जी, सामायिक गीत। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं फिर से, बहुत ज्ञानवर्धक वार्तालाप। या शर्मिली जी ने बड़ी अच्छी बातें बोली, तो उनका अपना एक माँ का जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, शायद इसी से हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। संजीव शर्मा जी लिखते हैं, वेरी नाइस प्रोग्राम। राजेश पांडे जी लिखते हैं, माँ का सुंदर गीत। चेतन शाह लिखते हैं कि पेरेंटिंग इज चैलेंजिंग, द कोर पैराडॉक्स बोथ साइड आर पार्टली राइट एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो डिफिकल्ट। चिल्ड्रंस आरंट रॉन्ग दैट द वर्ल्ड हैज चेंज, पेरेंट्स आरंट रॉन्ग दैट सर्टेन थिंग्स डू नॉट चेंज। सही बता रहे हम। ऋचा जी फिर लिखती हैं कि खूबसूरत और मीनिंगफुल गाने, द मोस्ट चैलेंजिंग, द मोस्ट रिवार्डिंग एंड येट मोस्ट टेम्प्टिंग चॉइस। संजय जी आपने किसके बारे में लिखा है, जरा विस्तार से बताइए। द मोस्ट चैलेंजिंग, आपने पेरेंटिंग के बारे में लिखा है या इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है? तो और आपके संदेशों का इंतजार है मुझे। लीला जी ने एक अलग से और लिखा था, एक हमारी कप्तान नरवानिया जी ने लिखा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उनको बड़ा पसंद आया। कप्तान जी भी यंग मदर हैं और बड़ी खूबसूरती से अपने बच्चों को उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के माहौल में पला बड़ा करा है, मैं उसका बहुत प्रशंसनीय, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। एक लीला जी ने अलग से मुझे मैसेज लिखा है, हाँ वही उन्होंने शेयर भी किया, सोशल मीडिया अभिव्यक्त की आज़ादी है और भटकाव भी, ये हमारे उपयोग पर आधारित हैं।
एक और समय था जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो सोशल मीडिया नहीं था और हमारी पिटाई विटाई भी खूब होती थी, प्राइवेसी वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन हम लोग ठीक पल गए। आई डोंट नो इसको कैसे बोला जाए कि कितनी एक्सपेक्टेशन बदल गई हैं। परहैप्स इसका एक कारण ये भी है कि अब एक ही दो बच्चे होते, अगर चार पांच बच्चे हों तो शायद ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वी शुड हैव मोर देन वन और टू चाइल्ड? ये भी शायद एक इशू है मेरे ख्याल से। अभी मंजू मित्तल जी भी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, धन्यवाद मंजू जी। तो ये प्रतिक्रियाएँ थी। मैं यही कहूँगा कि अगर हम दर्पण के माध्यम से कम वार्तालाप ऐसा शुरू करें, और कुछ ऐसी माएँ हैं जो मैं जानता हूँ उन्होंने अपने बच्चों को अपने परिवार को बड़ी अच्छी तरीके से पाला है इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में, तो शायद यही है कि एक दूसरे से सीखना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। हर एक की सिचुएशन तो अलग है, लेकिन फिर भी सीखा जा सकता है ऐसा मैं मानता हूँ। तो श्रोताओं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं,

0: ऋचा जी आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार यतीन जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: तो आप रेडियो प्रोग्राम सुन रही हैं
1: और जी आप, जी आप, और बहुत ही ऐसा टॉपिक आपने लिया है कि सब लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जो है नए सिरे से सोचना होगा यतिंदर जी कि कैसे अभिभावक और कैसे माता पिता हमें बनना चाहिए।
0: जी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप माँ हैं और आपसे ज़्यादा खैर मैं क्या बोलूँगा आपके सामने, मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो है कि अब ये जो माँ बाप हैं जिसका बच्चा ये गया है वो जिंदगी भर गिलानी में जिएंगे, ये मुझे सबसे बड़ा है। उनका उनका आपस उनका जीवन उनका आपस में संबंध उनका समाज के प्रति सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ बदल गया एक झटके में।
1: जी
0: तो हम आप तो दर्पण की काफ़ी आप लोगों को अपनी शिक्षाएं भी देती हैं, काफ़ी आप शेयर करती हैं, आप बताइए कि इसमें क्या प्रतिक्रिया, कैसे कैसे आप माँ होने के नाते खुद आप कैसे करती हैं, कैसे आप आपके अनुभव क्या हैं?
1: मेरा अनुभव ये रहा है जैसे कि पहले हमारे जो लिसनर बता रहे थे उन्होंने बताया कि कोई बुक नहीं होती है ना कि कैसे माँ बाप बने, जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया उसको सीख के हम वही चीजें अपने बच्चों के साथ करते हैं और सोचते हैं कि वो सही है। तो हमारे साथ पहली बात तो ये हुई कि हम ऑस्ट्रेलिया आ गए तो एक ये परिवर्तन हुआ हमारे साथ, लेकिन हमने अपने आप को नहीं बदला। हम सोचे कि हम जो है वो जो भी इंडियन भारतीय संस्कृति है हमारी और जो जैसे माँ बाप ने सिखाया है वही नियम हम अपनाएं। तो शुरू में जैसे आचार्य रजीश ने कहा कि जब बच्चे छोटे होते हैं इनोसेंट होते हैं तो वो जो आप कहते हैं उसको आंख मूंद के उसको फॉलो करते रहते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि बच्चे जो है वो जो भी संस्कृति थी, और अच्छी बात है संस्कृति संस्कार जरूर सिखाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चों ने हमें सिखाना शुरू किया जब बच्चे तो हमें उससे नाराजगी नहीं होनी चाहिए यतीन जी।
0: तो आपने सीखा फिर जब बच्चों ने सिखाया तो आपने सीखा?
1: जी बिल्कुल सीखा हमने, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी जो हम एक शुरू से लेके चलते हैं कि हमें बिल्कुल आईएएस पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इससे नीचे हम कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो भाई हमारा बच्चा म्यूजिशियन भी बन सकता है, हमारा बच्चा एक कारपेंटर भी बन सकता है, तो वो कुछ भी कर सकने की आजादी हमने उन्हें नहीं दी।
0: जी,
1: तो हमें एज ए माता पिता मुझे लगता है कि हमें बहुत सुधार करना चाहिए अपने आप में, अपनी सोच में, है ना। संस्कार संस्कृति जरूर डालिए लेकिन उन्हें सोचने की आजादी दीजिए और उन्हें ये भी सिखाइए कि हार भी जीवन का एक हिस्सा है।
0: क्या बात है।
1: ना, और हार जरूरी है जीवन में, जीतने के लिए यतिंदर जी हार बहुत जरूरी है।
0: जी बहुत सही बात। तो एक्चुअली हार नहीं, वो आपको एक सबक दिया जा रहा है, आपको मजबूत बनाया जा रहा है।
1: जी जी, लेकिन हम उसको अच्छे से लेते नहीं है एज ए पेरेंट्स। मतलब मैं अपना बताऊं, मेरे बेटे का एचएससी है और उससे ज्यादा मुझे स्ट्रेस है तो मुझे लगता है कि मैं ही क्यों नहीं उसकी किताबें पढ़ूं, क्या ये पॉसिबल है? तो मेरी बेटियां जो बड़ी हैं उनसे वो एचएससी कर चुकी हैं, उन्होंने कहा कि मम्मी आप चिल करो, है ना। बच्चों को यहाँ पे इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो जीवन में जो है कैसे अपनी जिंदगी ओवरऑल जिए।
0: जी,
1: क्योंकि वही बच्चे धराशायी हो जाते हैं इंद्र जी, क्योंकि हम ये सोचते कि नहीं तुमको जो है एचएससी में इतने मार्क्स लाना ही लाना है, तुम्हें जो है सर्टेन वे तुम्हें दिखना है, आप मोटे होके नहीं जी सकते हो, आपको पतला होना है चाहे आप भूखे ही रहो। तो हम उस चीज को स्वीकार नहीं पाते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसके साथ हम चले, है ना। तो इससे जो है बच्चे को आजादी नहीं मिलती है सोचने की और जीवन में आगे चल के, अभी तो ठीक है आप उनके साथ हो, आप उनके सहारा हो, जब आप नहीं होंगे ना, तो फिर उन्हें वो मुश्किलें आएंगी। कई लोग सरवाइव कर जाते हैं, सीख जाते हैं, और कई लोग उसमें धराशाही हो जाते हैं।
0: एक और बात है ऋचा जी, एज ए पेरेंट आप सोचते हो कि आप ही सही हो, आपने जो जान लिया वही अल्टीमेट है, ऐसा भी ठीक नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं
0: हो सकता कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा समझदार हो, ज्ञानी हो और हर चीज में आगे हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए जनरेशन गैप बढ़ता ही जा रहा है इंद्र जी, क्योंकि हम बच्चों की बात नहीं सुनते, हमें लगता है कि हम सबसे ज्ञानी हैं और ज्ञान बांटते रहते हैं बच्चों को लगातार
0: जी।
1: चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे वो घर खरीदना हो, चाहे वो कपड़े खरीदना, कुछ भी हो, हम अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, कभी उनसे नहीं पूछते है ना, कभी उनसे पूछते हैं हम, आप ये बताइए।
0: आपको मैं एक बात बताऊं, आप बीइंग अकाउंटेंट, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ विद नंबर नंबर के साथ में, कि जो डॉक्टर पैदा करते हैं और एक जो प्लम्बर पैदा करता है, शायद प्लम्बर डॉक्टर से ज्यादा पैदा करता है एंड ही गॉट वेरी गुड लाइफ,
1: बताइए, और शायद ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीते हो
0: जी,
1: इतना स्ट्रेस होने तो नहीं होता होगा जितना
0: उनका हॉलीडे होम होता है
1: जी,
0: कारें होती हैं, कौन सी चाहिए वो कारें हैं
1: जी,
0: दे हैव अ ब्रेक, दे हैव अ लाइफ, दे कैन स्पेंड चाइल्ड टाइम विद द चिल्ड्रन
1: जी,
0: मुझे मालूम है, मैं किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ आपको,
1: लेकिन
0: लेकिन हमारा जो है ना कि हमारा वो लड़का या लड़की डॉक्टर होना चाहिए
1: जी, वकील होना चाहिए, मेंटेलिटी को हटाना होगा जी यतिंद्र जी, क्योंकि मैं भी यही सोच लेके आई थी, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे पास वो चॉइस नहीं थी, हमारे इंडिया भारत में उस जमाने में कहा जाता था कि भाई आप अगर नहीं अच्छी जॉब करोगे तो यू कांट लीड अ गुड लाइफ, तो इसलिए उस मेंटेलिटी के साथ वही मैंने यहाँ भी शुरू कर दिया, तो बच्चों ने हमें समझाया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप टॉप जॉब करो तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हो, बहुत तरीके हैं, और उस चीज को मैंने समझा और अभी भी सीख रही हूँ यतिंद्र जी
0: लेकिन लेकिन एक और जो बात है कि हमें अगर चलो हम अगर उसमें चले जाते हैं कि भाई हमें बच्चे के लिए अच्छा करना, तो पहले जाने तो क्या अच्छा है बच्चे के लिए ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लम्बर यहाँ पे डॉक्टर से ज्यादा पैदा करता है
1: जी,
0: अब कितने लोग इसको, कई लोग तो मेरे से आर्गुमेंट भी करेंगे कि आप बकवास कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ,
1: लेकिन आप तो फिगर देख रहे हो तो आपको पता है,
0: और जो लाइफ है, अगर अगर लाइफ को भी एक आप एक एक एक मार्क्स देना चाहोगे, दे हैव फार वंडरफुल लाइफ,
1: बिल्कुल
0: कोई स्ट्रेस नहीं,
1: बच्चे शायद ज्यादा खुश हो,
0: मैं वही बच्चों की वो बच्चों बच्चों के साथ में वो जाएगा पिकनिक मनाएगा, जाके रात में कहीं जाएगा, गाड़ी लेके जा रहा है, बच्चों को खिला रहा है, उसके बच्चों के साथ में समय गुजार रहा है, क्योंकि वो कर सकता है, अब यहाँ डॉक्टर वाला तो है ना वो ड्यूटी लगाएगा 14 घंटे की उसकी शिफ्ट चल रही है,
1: देखिए वो भी जरूरी काम है, लेकिन
0: नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन पेरेंट्स के तरीके से मैं बात कर रहा
1: हूँ, जब आपको पैशन हो तो जरूर बने आप डॉक्टर,
0: हाँ आप बनो ना, आप बनो, लेकिन अब बाप डॉक्टर बन नहीं पाया, वो बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है,
1: हाँ बिल्कुल, उस मेंटेलिटी से निकलना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ यतिंद्र जी कि एज ए सोसाइटी हम बहुत अच्छे से बच्चों से रिलेट नहीं कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनसे क्यों नहीं हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि हम जब भी उनसे बात करते हैं तो क्या सवाल हमारे पास होता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, या आप कौन सी जॉब कर रहे हो, या आप जो है कि सबर में रह रहे हो, उससे हम निकल ही नहीं पाते हैं यतिंद्र जी
0: उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ओके,
1: तो क्यों ना हम ऐसे सवाल पूछे,
0: श्रोताओं बताएं और भी जो लोग सुन रहे हैं बताएं कि इसमें से कौन निकला है, चलिए ऐसे बात करते हैं, किसने इस चीज को चैलेंज करा,
1: मैं अभी भी निकल रही हूँ यतिंद्र जी और लेकिन मैं ओपन हूँ अपने आप को बदलने के लिए
0: जी।
1: जो भी बच्चे कहते हम क्यों नहीं ये सवाल पूछते हैं यतिन जी कि अरे ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का आपको कैसा लगा है ना, और क्या इसको क्यों नहीं हम कुछ और टॉपिक जिसमें नई जनरेशन जो है वो उनको इंटरेस्ट हो और हमसे रिलेट कर पाए, वो हमको देखते हैं और जो है कतराने लगते हैं कि अब बस ये सवाल की बारिश सवाल की बारिश आने वाली है कि कौन सी जॉब है आपकी
0: जी, जी।
1: तो ये एक मेंटेलिटी हमारी और है भारतीय समाज की, उससे हमें निकलना होगा, क्योंकि जो भी दुखद घटनाएं हो रही हैं उससे माता पिता तो जीवन भर के लिए,
0: मैं वही सोच रहा हूँ कि उन दोनों का क्या होगा, वो दोनों कितने वो, बट एनी हाउ ऋचा जी आज आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो खुद की जो सीख है औरों के साथ में आपने शेयर करी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद यतिन जी, और मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपने आप को बदलें तो समाज और नई जनरेशन और बच्चे अपने आप बदल जाएंगे, वो आपको ज्यादा समझेंगे। धन्यवाद।

0: ये शोता हुआ जो कृष्णा अवतार फिल्म है उसका ट्रेलर था, मैं खुद देख के आया हूँ। ये अलग दृष्टिकोण से फिल्म बनाई गई है। इसमें कृष्ण का जो प्यार का रूप है और जो सत्यभामा ने अपनी निगाह से जो उस प्यार को देखा है उसके ऊपर आधारित है, आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। हम आज इसके दो पास देने वाले हैं। आप जो विनर होंगे उनको हम कॉन्टेक्ट करेंगे। तो एक पास में दो टिकट हैं। आशा है कि आप अगर नहीं भी जीतेंगे तो भी फिल्म को देखने जाइए, ये हमारे प्राउड स्पॉन्सर भी हैं। तो हम बात करने जाते हैं अपने प्रदीप उपाध्याय जी से। देखिए कितनी जल्दी उनसे बात हो जाती है। तो आप बताइए श्रोताओ, किसी ने अभी ये फिल्म देखी है क्या? कृष्णा अवतारम अगर नहीं देखी है तो देखिए इसको, ये बहुत ही आपको अलग इसमें मिलेगा। एक प्रदीप जी, दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद यतीन जी, और आज आपने बिल्कुल इतना बहुत ही सीरियस टॉपिक जो है डिस्कशन किया है, और सारे श्रोताओं ने और हमारे कुछ ने लिखित प्रतिक्रिया दी है, और कुछ फोन पर भी बात हुई, ऋचा जी ने भी विभिन्न दृष्टिकोण बड़े अच्छे से कवर किए। लेकिन सारे संदेशों को कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो इस गंभीर विषय पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम टू डू कह सकते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरीके की घटना होती है हम लोग गंभीर चर्चा करते हैं कि ये गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन गंभीरता से इस पर विचार नहीं किया जाता कि आगे चलकर ऐसा ना हो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जिसमें जो एक चीज मुझको यतीन जी दिखाई देती है कि पेरेंटिंग जो है इसका भी एक इंडक्शन होना चाहिए। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ कि बच्चा जब 12th क्लास पास करके यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहां एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, यहाँ भी होता है और विदेशों में भी होता है, कि अब आप जो है स्कूल से आके एक हायर एजुकेशन सिस्टम में आ गए हैं और यहाँ पे ये आपसे अपेक्षित है ऐसे ऐसे किया जाना चाहिए, और उनको सही तरीके से समझाया जाता है ताकि उस माहौल में वो सेट हो जाए और वो उनको हेल्प करता है।
0: तो ये कौन करेगा, ये इंडक्शन कौन करेगा?
1: मेरे ख्याल से जैसे मदर्स हैं जब पहली बार मतलब होता है तो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और जो भी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, मदरहुड प्रोग्राम होता है कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, साल दो साल का हो जाता है, तब तक ये कार्यक्रम चलते हैं ताकि क्योंकि उस समय बच्चे को अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन देखभाल वहां पे खत्म नहीं हो जाती, देखभाल आगे भी चलती है। तो प्रोफेशनल कार्यक्रम जो है

0: तरीके के होने चाहिए कि एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए क्या क्या चीजें हों। हम और आप पेरेंटिंग कैसे सीखते हैं, आसपास देखकर सीखते
1: जी,
0: हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: जो जो सफल उदाहरण हमने देखे कि अच्छा वो अमुक साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे को देखो बिल्कुल डिसिप्लिन करके रखा, डांट फटकार के रखा, देखो उनका लड़का डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, जो भी है सफलता का जो भी मापदंड है उनका वो बन गया
1: जी, जी,
0: तो हमको ऐसा करना चाहिए। फिर दूसरा कोई उसका विपरीत उदाहरण देखता है कि देखो वो अपना ठीक जी रखते थे, बच्चा इंटेलिजेंट था, इस तरीके से चल गया। तो इसमें ये बहुत ही सीमित दायरे से हम जो है जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, इसमें आवश्यकता है एक प्रोफेशनल।
1: आप इसको समझते हैं कि ये सामाजिक है या ये गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए?
0: गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट रोल रहना चाहिए, और लेकिन
1: ये सामाजिक है, ये इसमें गवर्नमेंट का मेरा नहीं मान रहा मैं गवर्नमेंट का, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास में कितनी अकल है। जो सामाजिक काम है वो समाज को ही करने पड़ेंगे, हमें एक दूसरे को समय देना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल देना पड़ेगा समय देना। अभी जैसे जो ओशो का जो आपने सुनाया था वो भी एक सामाजिक फीडबैक ही तो हम ले रहे हैं कि उन्होंने बताया कि ऐसा होना चाहिए, ये समस्या है, इनको इस तरीके से समाधान किया जा सकता है। लेकिन जो
1: जो जो, जो दर्पण रेडियो के थ्रू जो जो हम समझो अभी एक बात कर रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। दर्पण रेडियो सामाजिक प्रोग्राम है और हमें इस प्रोग्राम के द्वारा या किसी और भी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें ये करना ही होगा।
0: बिल्कुल, ये चर्चा करके हम जो है अपना एक दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन इसका आगे इस चर्चा से कितना समाज का या सारे लोगों का लाभ होता है यह एक दूसरा मसला है, और उसके लिए कैसे उसको किया जाना चाहिए।
1: चलिए हम एक काम करते हैं, आज ही हम इसको एक डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक हम मदर ग्रुप ऐसा या पेरेंटिंग ग्रुप बनाते हैं दर्पण रेडियो के थ्रू। आप हमें श्रोताओ आप बताइए कि कौन इसमें शामिल होना चाहता है और हम इसको स्पॉन्सर करते हैं, हमें इसका एक वेन्यू और उस तरीके से करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, इन परफेक्ट शुरुआत करते हैं आज।
0: बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत होनी, और उसमें जो है आपके जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको भी शामिल करिए ताकि उनको पता चले कि उनके अपने अपने अनुभव उनके कैसे रहे हैं पेरेंटिंग में, क्या क्या उनके लिए बेहतर किया जा सकता था, उनकी अपना क्या फीडबैक है। इस तरीके से मिला के जब सारे लोगों को इन्वॉल्व करके एक कलेक्टिव एक एक्शन फॉर्म करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, दीज आर द डूज दीज आर द डोंट्स, और इस तरीके से तो मेरे ख्याल से
1: कल को जो बच्चे हैं वो भी पेरेंट्स बनेंगे। ऐसे भी देखिए
0: बिल्कुल बिल्कुल वो भी पेरेंट बनेंगे। होता क्या है कि वो पेरेंट बनते हैं उनको अपने पेरेंट्स की समस्याएं नजर आती हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो समस्याएं हमने फेस नहीं की वो समस्या हमारे बच्चे फेस न करें। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है, हमारे माता पिता के साथ भी हुआ होगा, ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन होता क्या है कि समाज में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, समय की अपेक्षाएं बदलती है, परिवेश बदलता है। तो
1: दूसरा एक और जो बात है कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके एक अकेले हो जाते हैं, ये हमें सच्चाई को मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जो
0: ये मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लूंगा, क्योंकि ये समस्या तो जो भारत में फॉर एग्जांपल जो परिवार रह रहे हैं वो समस्या वहाँ पे और अधिक है सर, यहाँ से और ज्यादा है।
1: अच्छा,
0: वो तो वहाँ बिल्कुल अपने तरीके से रह रहे हैं लेकिन समस्याएं वहाँ पर भी है।
1: तो जो जो हमारा जो संयुक्त परिवार होता था वो उसका कंसेप्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया।
0: बिल्कुल खत्म हो रहा है। अच्छा वो खत्म क्यों हुआ, आप उस पे अगर व्यावहारिक रूप से देखें भाई उसमें कुछ कमियां नजर आई इसीलिए तो खत्म हुआ, लेकिन आज उसके खत्म होने की कमियां हमको नजर आती हैं कि संयुक्त परिवार के ये फायदे थे। तो हर चीज में फायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन एक जो आपने जो बेसिक सवाल पूछा था ना, क्या हमेशा सच है क्या पेरेंटिंग की, देखिए मैंने भी कोई क्लास नहीं ली है कि मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, अनुभव के आधार पर ही बता सकता हूँ कि अगर अपने बच्चे को अगर आप कोई वैल्यू सिस्टम देना चाहते हैं तो एक सच बोलने का उसको वैल्यू सिस्टम दीजिए, ट्रांसपेरेंसी, सच बोलना और अपने आप को ईमानदार रखना। अगर सिर्फ यह व्यवहार अपने बच्चे के सामने आप कर देते हैं
1: क्या बात,
0: तो मेरे ख्याल से 50% समस्या बच्चे की जो भविष्य में जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे वो सॉल्व हो जाती है। आप देखिए हम लोग कितना बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, हर दूसरे दिन हम कहते हैं कि बेटा जब हम हमारी तुम्हारी उम्र के थे तो हम ये काम नहीं करते थे, है ना, कितना बड़ा झूठ है। तो हम उनको झूठ बोलना सिखा रहे हैं। अपनी कमियां उनको बताइए, बेटा मैं तुम्हारी उम्र का था تو میں سوچا کہ فیل ہو گیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا تم اس سے شکشا لے لو ایسا کر سکتے ہو اور میں گارنٹی بتا سکتا ہوں کہ 90% بچے اس سے شکشا لے کے اپنی سفلتا کی گارنٹی کو بڑھا
1: لیں گے اس اس بات کو کہہ کے پروگرام میں جان ڈال دیا آپ نے بہت بڑی بات بول دی کہ ہمیں ہپوکریسی سے بجائے ایک ایک عام انسان کے طریقے سے بچوں کے سامنے آنا چاہیے رادھا دین کی آئیڈیل پیرنٹ کے طریقے سے ہم بھی انسان ہیں ایسے کر کے
0: جب ہم دکھاوٹی ویوہار کرتے ہیں اوروں کے سامنے تو بچے اس سے بالکل اپنی گیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہی صحیح ہے ہم کو بھی ایسا کرنا ہے اور جب وہ بناوٹی دنیا میں آپ اندر گھستے ہیں تو پھر سمسیاں ادھک ہوتی ہیں سمادھان کم ہوتے ہیں
1: جی آپ نے تو بات کو بہت سمپل کر دیا کہ اگر ہم چھوٹا سا ہی کام کر لیں ایک ایمانداری سے کہ بھائی ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ کو بھی غلطی کرنے کا ادھیکار ہے ہاں ایسے کرتے ہیں
0: اور میں اگلے ہفتے میرا کارکرم میں ایک تھوڑا سا ہلکا پھلکا بتا دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں بہت اچھا کارکرم کرنے والے ہیں ایک سنگیت میں کارکرم ہونے والا ہے شروتاؤں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیتا ہوں کہ سمن کلیان پوری جو ہماری ایک سنگر ہے انہوں نے بہت گانے گائے ہیں لتا منگیشکر کی اچھی کنٹینڈر مانی جاتی تھی تو ہمارے ایک شروتا ہے پیٹ وارانسی جی وہ اس پرکار کے کارکرم تیار کرتے ہیں اور اس سمے جو ہے وہ اسی کی شودھ میں اور اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں میں اور وہ ہم دونوں
1: بہت
0: سندر کارکرم ہم اگلے ہفتے لے کے آنے والے ہیں تو شروتاؤں لوگ آپ بالکل تیار رہیے گا اور بہت اچھا کارکرم سنگیت میں آپ کو سننے کو ملے گا اور سمن کلیان پور کے وشیش گانے اگر کوئی سننا چاہے تو ابھی پورا ایک ہفتے کا سمے ہے اس کو ہمارے فورم پہ آپ کریے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلا کارکرم جو ہے شروتاؤں سے اچھے سے کنیکٹ کرے اور تھوڑا لائٹ ہو آج تو آپ نے بہت ہیوی پروگرام کر دیا یتین جی بٹ اوور آل آئی تھنک بہت اچھی جانکاری شروتاؤں کو ملی ہے
1: ہمارا سماجک اتردایتو ہے ایسے میں دیکھتا ہوں دھنیواد پردیپ جی
0: دھنیواد
2: بھائی صاحب یہ کری ماسٹرز اور انیہ مسالوں میں کیا انتر ہے
3: بہن جی کری ماسٹرز کمپلیٹ کری مکس ہے اس میں آنین گارلک جنجر ٹماٹر نمک مرچ ہلدی دھنیا وہ سبھی مسالے ملے ہوئے آتے ہیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں لاجواب ہے اٹس سو ایزی ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.currymasters.com.au

0: श्रोताओं, हमारा जो एक प्रयास हुआ उसका शुरुआत भी होके लगता है। शर्मिली जी ने लिखा है, आई हैव ऑलरेडी गॉट ए स्मॉल ग्रांट टू रन ए सोशल नेटवर्क लाइक दिस, प्लीज़ कैन वी वर्क टुगेदर। शर्मिली जी, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? लगता है कि आज हम एक शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आप कह सकते हो कि दर्पण मदर्स ऑपरेटिंग ग्रुप, ऐसे इसका हम नाम रखते हैं, और जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो हमें लिखिए, हमारे ग्रुप पर आ जाइए, या मुझे नंबर मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 04215907911। हम कुछ और भी, एक जसप्रीत जी ने लिखा है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं। कुछ और समाचार, कुछ और संदेश और आए हैं, मैं उनको भी पढ़ना चाहूँगा कि लीला जी लिखते हैं, दो बच्चे तो होने ही चाहिए, तीन हो तो चाचा ताऊ बुआ मौसी आदि जैसे रिश्ते जिंदा रहेंगे, वैसे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। शैलजा जी लिखती हैं, द टाइम फॉर द प्रोफेशनल अटेनमेंट इज एट पीक फॉर द पेरेंट्स एंड बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर देयर चिल्ड्रन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट एंड बोथ डिमांड टाइम डिवोशन एंड एनर्जी। हाउ डू यू नेविगेट दिस चैलेंज व्हेन ईच फैमिली इज सो डिफरेंट? हाउ कैन यू मेक एनी रूल? आई बिलीव दैट कम्युनिकेशन विद इन द आउटसाइड द फैमिली विद ओपन माइंड एंड, बहुत सही बात बोली है शैलजा जी आपने। रंजना जी लिखती हैं, रंजना जी भी काफ़ी यंग मदर हैं, टचिंग सॉन्ग बाय जगजीत सिंह, गुड पेरेंटिंग इज रियली टॉट, डज नॉट मैटर हाउ टायर्ड और एग्जॉस्टिक यू आर एज ए पेरेंट, यू हैव टू बी ए काइंड विद किड्स, देर इज ए नो स्ट्रिक्ट रूल फॉर गुड पेरेंटिंग, वट एवर वर्क्स फॉर यू इज द बेस्ट। लीला जी लिखती हैं, सच्चाई बयां करते हुए अत्यंत मार्मिक गीत। जी, सच को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पैट वाराणसी जी लिखते हैं, यतीन्द्र जी, वेरी इंट्रोस्पेक्टिव एंड सीरियस टॉपिक, गुड ऑन यू। पेरेंटिंग इज अकिन टू नर्चरिंग प्लांट्स। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली। ऑल प्लांट्स नीड वाटर, सनशाइन, बट सम नीड मोर, सम नीड लेस। सम नीड मोर नर्चरिंग वाइल अदर्स प्रिफर लेस नर्चरिंग एंड मोर इन एन नेट नेचर। बेसिक ऑफ पेरेंटिंग, द कोर वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट, लव, अफेक्शन, सपोर्ट, एम्पथी, एनकरेजमेंट, हाउ आर इंट्रैक्ट विद। बिल्कुल आपने अच्छी बातें बोली हैं, श्रोताओं पढ़िएगा जो पैट वाराणसी जी का मैसेज है। लीला जी लिखती हैं, चार्ल्स डिंकन ने कहा है कि जीवन में दो ही दिन महत्वपूर्ण हैं, पहला दिन जिस दिन जन्म होता है, दूसरा जब यह महसूस करता हूँ कि मैं कौन हूँ। हमारी परवरिश में आज बच्चों के लिए यह दूसरा दिन होगा, आने से पता नहीं चलता, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हमारी फ़ोन बीच में आ गया था तो इसकी वजह से। हमारी परवरिश में आज बच्चों के लिए यह दूसरा दिन आने ही नहीं पाता, यह बात विचारनी है कि हम कौन हैं। बात सही है। प्रदीप जी ने बोला, ऋचा जी का विचार सराहनीय है, ऋचा जी के अनुभव अत्यंत लाभदायक हैं, बच्चों को बदलने से ज़्यादा खुद को बदलना जरूरी है। हेमलता जी लिखते हैं, नमस्ते दर्पण रेडियो प्रोग्राम एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, वेरी वेरी सॉरी टू हियर 19-year-old सन लॉस्ट, ओम शांति। वी हैव टू लिसन टू चिल्ड्रन व्हेन दे नॉट रियली हैप्पी एंड इन होम नो हैप्पीनेस। सही बात बोली, हमें बच्चों को सुनना जरूरी है, हमें वार्तालाप में जाना होगा, ना कि वन वे स्ट्रीट। चेतन जी लिखते हैं, हम में से कोई कृष्ण भगवान नहीं है, जिसके पास विजडम है, विजडम ही विजडम है, इसलिए माता पिता को गीता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सही बात बोली है। महेंद्र जी लिखते हैं, महेंद्र गुप्ता जी लिखते हैं, वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वेरी इम्पोर्टेंट एज वेल, इंड्यूरिंग द लर्निंग फ्रॉम मदर्स पेरेंट्स। सही बात बोली है महेंद्र जी। रुचिका जी लिखती हैं, द प्रोग्राम इज़ ट्रूली वंडरफुल एंड सॉन्ग्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हेमलता जी फिर से लिखते हैं, ऑफ चेंजिंग अदर्स वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। लीला जी फिर लिखती हैं फिल्म अभी देखी नहीं, हाँ देखिएगा। चलिए लीला जी, हम आपको पास भेजने वाले हैं, आप देखिएगा और अब दोनों लोग जाइएगा आप दोनों लोग। सुहास राणे जी लिखते हैं कि जब हमारे घर में बच्चा होता है तो हमारी उम्र भी माता पिता के स्वरूप में उतनी ही होती है जितनी कि बच्चे की, हमें भी आदर्श मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। राजगर जी, आपने अभी मुझे लिखा है, थोड़ा लेट हो गया, समाप्ति की तरफ प्रोग्राम जा रहा है अगले बार में, लेकिन आप अपना विचार इस पर शेयर कर सकते हैं। रुचिका जी फिर लिखती हैं, पेंटिंग इज लव गाइडेंस एंड एंडलेस केयर। अमिता जी लिखती हैं, वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल प्रोग्राम, थैंक्स यतिंदर जी। तो आज मैं सोच रहा था कि काफ़ी समय मिलेगा, लेकिन आज भी वही गड़बड़ होगी कि समय जो है ना हमेशा कम ही पड़ जाता है।
1: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
2: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.karimasters.com.au।
0: ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, एक सुधीर सिन्हा जी ने भेजा है, एक मैसेज है वो कि 10 Days to Sahaj द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी पॉइस, हमारे दर्पण रेडियो के जो ग्रुप है उसमें है इसका। श्रोताओं, आप उसको पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। श्रोताओं, हम प्रोग्राम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसके पेरेंटिंग के ऊपर होगा, उसका नाम भी रखते हैं दर्पण पेरेंटिंग ग्रुप। उसमें जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो हमारे दर्पण रेडियो पर लिखिएगा या मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 04215907911। शायद कभी कभी होता है कि छोटी सी शुरुआत होती है, कहाँ से कहाँ। मैं समझता हूँ कि अगर एक परिवार, एक बच्चे को भी इसमें हेल्प मिलती है तो इट्स वर्थ डूइंग।
3: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
4: Aap sun rahe the Hindi Karyakram. Hame har rivivar sunye subah 9 baje se. Apne vichar bhejiye aaj ke karyakram ke bare mein. Email kijiye feedback@dapanradio.org.au.
0: आखिर में हम उस परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। होता है, एक मैं वार्ता लेके आया था, हो सकता कि अगली बार सुनवाएंगे। क्या आप सोचते हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? एक प्रश्न है, सोचिएगा।